0: Simon, 89.8 megahertz.
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो. It's 2:08 p.m.

होम अप्लायन्सर को खरीद में कैश बैक तथा सियो शॉर्ट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन फ्री स्टैंडिंग ओवन और प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भाई पुग्छ सहज EMI मार्फत खरीद कर सकता।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ज।
2: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 8:30 PM।

हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

0: सूचना संगीत र मनोरञ्जनको अटुट साहिलो यो हो रेडियो साहिलो 99.8 मेगाहर्ज।
1: सुर में गाना सीखिए पाधनीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

को अवसर में ईसीएल का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैश बैक तथा श्योर शॉर्ट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एवियर मैजिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता ग्लोबल नंबर वन टीसीएल इंस्पायर ग्रेटनेस